यो चाड़ पर्व में यूरो पेंट्स प्रस्तुत कर रंगीन घर बरसिम उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट्स को खरीद में पाउनु होस् लकी ड्रॉ कूपन अनि पाउनु होस् 3 वर्ष एसी 1 टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक अनि बम्पर प्राइस में पाउनु होस् 1 जोड़ी को लागि बाली टूर यूरो पेंट्स घर मात्र होइन रंगाउनु होस् सपना पनि।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड
1: आवाज हिनेक आवाज पश्चिम नेपालक आवाज यी हो रिरी मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज।

राम राम सन्झे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 रतनपुर गत असोज 10 गते गैलक विनाशकारी हावाहरू हुरिसे। किसान होम बहादुर केसीको क्यारा खेतीमा भारी क्षति पुरा राखल। विद्यालयको जग्गा भाडामा लेखन व्यवसायका रूपमा खेती गर्दै ऐलक केसीसे हजारौं बाट क्यारा नष्ट हुबेर भारी आर्थिक नोक्सानी ब्याहर परल रहबाटिन। सरकारी विद्यालयको 4 बिघा जग्गा भाडामा लेखन क्यारा खेतीमा हावाहरूसे 2000 बाट क्यारा ढलल। किसान केसी जानकारी दिएर उहाँको अनुसार उत्पादन होकन बजारमा ब्याचकलाक ठिक्क पर्लक 1300 बाट पूर्ण रूपमा नष्ट हुल बाटन। यसे हालसम्म 15 लाख रूपियाँको बराबरको प्रत्यक्ष क्षति हुलक पीड़ित किसान जानकारी दिरखल। यसे अघारी जेठ 20 गते ऐलक हावा उरिसे फे क्यारा खेतीमा भारी क्षति पुगेल रहिन। घरिघरि प्राकृतिक विपत्ति अस्त्रा भारी विपद परिमाणमा क्षति हुबे फे स्थानीय सरकार वा सरकार निकायसे कोनो किसिमके चासो निदेलको निरीक्षण समेत निएलक गुनासो किसान बटवा रखल। व्यावसायिक कृषिको लगलग किसानको नक्से प्राकृतिक प्रकोपसे पारमन असिन समस्या झ्याल पर्लक। समयमा राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था निहेबेर कृषक थप निराश बन्ती गेलबाट सम्बन्धित निकायको ध्यान समय मजो निपुग्लक बटवार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको से तुलसीपुर वितरण केन्द्र से महसुल काउन्टर पूर्ण रूपमा बन्द गर्न हरहल। आगामी मंगसिर 1 गते से भौतिक काउन्टर बन्द कैकन अनलाइन मार्फत विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न कैकन आवश्यक व्यवस्था मिलिन केन्द्र प्रमुख सुरेश कुमार महतो बटवारखल। उहाँको अनुसार सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आर्थिक वर्ष 2083-84 नीति तथा निर्देशन अनुसार ग्राहक सेवाहन प्रभावकारी बनाकन 24 घण्टा अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेवा। हाल अनलाइन भुक्तानी गर्नको संख्या उल्लेखीय लग उहाँको काहीबाटिन। हालसम्म 42% ग्राहकको नक्से अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्न शुरू करलबाट भौतिक रूपमा उपस्थित होकन महसुल भुक्तानी बुझाइबेर रकम सेफे बढ़ी समय ओ आवाजावतमा खर्च हुना भुगिल खोर्से प्रविधियुक्त प्रणाली हन अनिवार्य कर्गिलक महत्वको काही बाटिन। घोराही तुलसीपुर सड़क खण्ड अन्तर्गत ग्वारखोला पुलक पूर्वतर्फ भाषक होकन बन्द हुलक सवारी आवागमन 4 दिन से सहज हुना होरहल। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुख माधव ओली ओ विपद व्यवस्थापन समिति समेक सुदमान भण्डारी आज फिल्म जो पुक्कन सड़क सञ्चालनकलक तत्काल पहल करलख हो। नगर से टोली पुक्कन संचालन कर वा तत्काल डाइवर्सन निर्माण कैकन सवारी आवागमन सहज बनाएका निर्देशन दिलक हो। निर्देशन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि से असोज 16 गतेसम्म सड़क संचालन गर्न प्रतिबद्धता जना राखल। ओ बीचसम्म बाइपास कैकन प्रयोग हुइतिरलक वैकल्पिक रूपमा खाल्दा खुल्टी पुर्कन आवागमन सहज हुना काम समेत करगिल्बा। सड़क भाषकन ग्वारखोला पुक्कन पूर्व मोर्क सड़क फे 3 दिन सवारी आवागमन बन्द कराखल। हुठा ताजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्जाइफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष खसकको संगठनसँग मै शालिक राम चौधरी विदाहिटु रिडी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: वरिष्ठ पाइल्स फिसर तथा फिस्टुला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह अब दाङगुराईको दिव्य फार्मेसीमा।
2: आधुनिक लेजर प्रविधि द्वारा उपचार र बिना चिरफार उपचार
3: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू पाइल्स फिसर फिस्टुला र पाइलोनाइडल साइनसको आधुनिक लेजर प्रविधिबाट बिना चिरफार उपचार
4: बिना टाका प्रभावकारी उपचार
2: दिशा गर्दा दुख्ने रगत आउने मासु पलाएको घाउ भएको पिप बग्ने चिलाउने कब्जियत एवं सम्पूर्ण रोगको सफल उपचार तथा परामर्श
4: शरीरको कुनै पनि भागमा मासु पलाएको अनावश्यक तथा मुसा कोटी आधुनिक मेसिनद्वारा हटाइन्छ
2: शल्यक्रियाको डर बिना सुरक्षित उपचार र तुरन्तै डिस्चार्ज
4: नोट फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ
5: बिरामी जाँच हुने मिति यही असोज 16 गते शुक्रबार
6: दिव्य फार्मेसी कुराई 15 सडक विभाग रोड सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-410 मोबाइल नम्बर 98478-28913 98478-26163 र 98095-12871।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि, दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।